अंतर्गत हो जाइए। सुरती द्वारा जदों अंदर नूं श्वास जांदा वाहे महसूस करिए, बाहर नूं श्वास आउण ते गुरु सुरती द्वारा नेत्र बंद रखिए।

सिमरन करी जाना है, अंतर्गत स्वास जाता है सुरती द्वारा वाह पारनों आंदा गुरु अंदर रखना सुरती नू अंदरों सुनना है।

नेत्र बंद रखने हैं। इदा ही आप अपनी सुरती नू बस देखी जाना अपने आप नू। जदों अंतर्गत जे फुरना बने फिर बोल के अभ्यास शुरू कर लेना हुंदा, ते नहीं सुरती द्वारा करी जाना जदों अंतर्गत बैठना। यही आप फिर ट्राई करना, जिदा आप पढ़ते हैं ट्राई ट्राई अगेन। तो जदों कोई गुरमुख कहे भी मैं तो बड़ा अभ्यास किया मेरा मन नहीं टिकया, तो जे मैं आप दृष्ट मन कहने वो कहते भी आई ट्राइड, सो दे से यू हैवंट ट्राइड बेस्ट, सो ट्राई हार्डर, ट्राई हार्डर, होर जतन करिए, होर मेहनत करिए। अपने मन नू एक जरूर गुरु साहब कृपा करनगे जदों असी अपनी मत सारी छड़ के उसनू मिलन वास्ते ये सुख लैन वास्ते उद्यम करांगे। वो आप कृपा करते ने सानू समझाते ने हर सिमरन मैं आप निरंकारा, जदों कृपा करते ने उदों ही सानू बिठाते ने। तो ये सानू युद्ध तो हुण लड़ना ही पएगा पंजन दे नाल जे असी सुख चाहते हैं। सो इदां आपां सिख लैनी हुंदी है संगत दे विच जुगत सतगुर ने कृपा की है, समागम आपां नू बख्शिश कीते ने गुरमुख प्यारे सवेर तो शाम तक 9 बजे तो लैके 8 बजे तक सानू समझा रहे ने। आपां ये समझ लीए जुगती फिर असी घरां परिवारां दे विच जा के इहदा अभ्यास करना, लगातार संगत करनी है। यही एक गुरसिख का जीवन है, कर्म भी करने आ ग्रहस्थ च भी विचरना ते नाल अपना मार्ग भी नहीं चलना छड़ना। इदा नहीं जाना भी ये पंजा ने सानू बंदी खाने च बंद किया ते असी उत्थे ही जीवन सारा बिता दिए बंदी खाने च, आजाद हो के देखिए ही ना सानू किस वास्ते जीवन मिलिया, वो आनंद माणिए ही ना। बाहरों ही मानस जात रह जाए, अंदर साड़ा वही वकार चलते रहन। सो आओ फिर यही जुगती है बस, आपां जिवें साडा मन गुरमंत्र नूं सुणन लग गया अंतर्गत बैठे पराबाणी नूं सुनेगा, सुन के अपने घर चला जाएगा। होर जुगती दी सानूं किसे दी लोड़ ही नहीं पैणी, जिन्नी देर तक गुरमंत्र नूं ही नहीं हले सुणदा एक कुछ नहीं कर सकदा। भरम दे विच पै के शंके दे विच पै के बाजी हार जरूर सकदा। सो आओ आपां गुरु साहब दे हुक्म नूं फेर कमाईए। उन्हें सानू ये फिर हुक्म किया जो स्वास ग्रास त्याई मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावे। गुरु नू चंगे लगते ने सौंदे वाहो वाहो उचरें, उठते भी वाहो करें, वाहो वाहो करते से जन सोने। उन्हों वो सोहना लगता मुख जिहड़ा उहदी उस्तति कर रहा। सो आओ उसकी उस्तति है जिन्हों मारे कहें वाहो वाहो गुरसिख नित सद करो, गुर पूरे वाहो वाहो भाव है पूरे गुरु नो ये चंगा लगता जेड़ा गुरसिख वाह गुरु वाह गुरु करता, क्योंकि वो उसकी उस्तति कर रहा किस दी, अपने पिता दी अपने मालिक दी। सो आओ आप फिर अभ्यास करिए बोलना, नेत्र बंद रखने। एक बेनती, फोन आप प्लीज़ साइलेंट ते जे कर सकते हैं दरबार साहब के अंदर जरूर इनू कोशिश करिए। जे कोई ज़्यादा एमरजेंसी है तुसी वाइब्रेशन ते ला सकते हो, उठ के फिर पिछे जाके अटेंड कर लिया। पर आपां इस सावधान होना भी ये सारे गुरमुख जिहड़े आए ने सानू नहीं पता हुंदा किसी जीव के अंदर किन्नी तड़फिया, ते असी कई बार साड़ी छोटी जी गलती किसी जीव की किन्नी सुरती नू हिला दिंदी है, सो बड़ा वड्डा पाप हो जाता। सो असी इस सावधान हो के चलना भी संगत दे विच जदों अभ्यास हुंदा गुरमुख प्यारे जदों सानू अकथ कहानी समझाउंदे ने असी इदां विचरीए भी साडे नाल वाले नू किसे नू साडा पता ना लगे, साडे करके कोई होर सुरती ना हिल जाए। सो आओ आप सारे फिर वैखरी बाणी दे विच अभ्यास करिए शुरू।

रल के एक लैवेज वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे वाह ग्रे

लगे रहो जी अंतर्गत, नेत्र बंद रख के करद्या करद्या अंतर्गत आज हौली हौली रसना तो भी बोलना बंद कर देना। इस तरीके ने अभ्यास करना, हर का बिलोव ना बिलोव मेरे पाई, सहज बिलोव जैसे तत् ना जाई। श्वासों के विच शब्द नू लेके रिड़की जाओ।

राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम पारा। सब त्यावै है सब त्यावै है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दाता रा।

कर क्रिया खाट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो पावै है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तो निःचल करता सोई।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुन राशिस का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोपन ब्रे

राम काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट की पट पट की जानै जाबुद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपनी बूझ उचारै

जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उदारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित राख उरतारो। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म।

0: चेक चेक चेक, अब तक आवाज नहीं की, जब तक मैं यूट्यूब अंदर जाके ऑफ नहीं करूंगा स्विच। एस वेली रेडियो हाल आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, हाँ यूट्यूब तो नहीं आएगी। हूँ मैं जाके अंदरों जाके यूट्यूब ऑफ करूँगा, तब साडा जिहड़ा माइक्रोफोन सारे चलने शुरू हो जाएंगे अंदर वाले। ठीक है, सो नाउ वी कम बैक टू द कंक्लूजन। ओके, क्या किया किता चेक वन टू चेक चेक चेक वन टू।
1: ये क्या है कि सानू थोड़ा जिहा गाइड करना पड़ा उन्होंने मुंडिया ने।

0: हो जाएगा और तुम्हें यूट्यूब पे आवाज आनी चाहिए दिया मेरे बोलने की।
1: चेक चेक 1 2।

0: चेक चेक देख क्यों नहीं आएगी आवाज़, क्योंकि उत्थे जाके ना नू जेड़ा फिजिकल जेड़ा आईपैड ते चेक चेक चेक चेक कोई आवाज नहीं। नहीं नहीं जस्ट जस्ट लिसन जे यूट्यूब
1: रिकॉर्डिंग करता।

0: पर यूट्यूब स्विच वर्चुअल ऑफ होना चाहिए, फिर लाइव चलना चाहिए, डोंट यू थिंक सो?
1: हुण क्या हैगा इस वेले जदों असीं जिहड़ा वह मेन स्विच हैगा, उहदा एक फंक्शन हैगा, मेन स्विच लाइव ते जदों जांदा हैगा, मेन स्विच मीन फिजिकल स्विच जदों लाइव ते जांदा है, वो ऑटोमैटिक यूट्यूब नूं म्यूट कर दिंदा हैगा। ठीक है, ठीक है। हुण क्या है, हुण क्या अगर लाइव कंडीशन विच अगर मैं अमृतसर चलाना, बाई चांस वह क्या करते हैं नैचुरली दे वांट टू, सानू यूट्यूब उदों चलाना चाहिए हैगा आ जदों स्विच रिकॉर्डिंग ते होना चाहिए हैगा। जितेंद्र, स्विच रिकॉर्डिंग ते होना चाहिए जिन्ना रेडियो डिस्टर्ब ना हो, यूट्यूब वर्चुअल ऑन होना चाहिए जिहदे विच लोकल यूट्यूब चले, आउटसाइड रेडियो चले, वो असीं पहला कंडीशन मैट कर चुके हैं।

0: बोलो
1: दोबारा बोल लें, दोबारा बोल लें।
0: चेक वन टू, वन टू, चेक चेक चेक।
1: ओके, अब पहली कंडीशन सी लाइव थे, वर्चुअल स्विच ऑफ है कि ऑन है? ऑफ होना चाहिए।
0: मैं देख चेक करके देखता हूं।

0: लाइट यस मैंने
1: वर्चुअल स्विच ऑन करो
0: वर्चुअल ऑटोमेट ऑन करना चाहिए।

0: थोड़ा टेस्ट कर, ठीक है, ये बंद करता हूँ।
1: चेक 1 2, चेक चेक चेक, लाइव थे जितेंद्र।

0: गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾ
0: 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 무르 와 guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुर

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुर

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुर

एक ओंकार सतगुर प्रसाद स्वये महल्ले चौथे के एक मन पुरख निरंजन त्यावो

सेज सदा सहचावान संतोख सरायचो सदा सील स्नाह सोह गुर शब्द समाचर।

चक्र बक्र फिरे चतर चक मान ही पुरतीन आदेवन आद मूरत हप्यो सबे ते थाप सर्व विश्व छियो सिंधव गण पंजन हार तरम ताम सो परम रहत भूत अलख पेश गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप सूत सर्व लायक सर्व कायक सर्व

0: पारते पर है करुणा कर है
1: जपा जप तपा थप
0: अट्टा कीर्त है अमृता अमृत है
1: अमृता मृत करुणा कृत
0: अट्टा कीर्त है तरणी कृत है
1: अमृतेश्वर है परमेश्वर
0: अट्टा कीर्त है अमृता अमृत है
1: जपा कृत है अमृता
0: नरनायक है खलकायक है
1: विसंबर है करुणा
0: निपनायक है सरपा।

0: नमो इंद्रियनादं प्रभुते नमो आसे आसे नमो बांक बंके त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
1: कचरी चंद अजय अलय अभय अभय
0: अबू अजु अनास कास
1: गंज बंज लख पक
0: अकाल जाल अलेख बेख
1: अनाम

0: सुधा दो संत समूह अनेक मति के।
1: सारे देश को देख रहे हो मत कौन ना देखत प्राण पति के।
0: श्री भगवान की पाए कृपाओं ते एक रति बिन एक रति के।
1: माते मतंग जरे जर संग नूपु तंग सुरंग सवारे।
0: ओ तुरंग कुरंग से कुदर पौन के गौन को जात निवारे।
1: भाई पुजान के पूपली बिद न्यावद शीश न जात बिचारे।
0: एते पे तो कहा पे पूपते अंत को नांगे ही पाए पदारे।

0: भगवान कृपा भी त्याग जहां निदान चलेंगे।
1: पार बटे बरियार बचारे सार की तार बछैया
0: तोर देश मलिंद बवासन माते गजान के मान मलैया
1: हरे गरान के तोर नहा सो बात नहीं चिक चार लवैया
0: साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक नेक।

0: दधति
1: तुम्हारा लखान जाए पसारा गैवी सजा प्रथम संसार
0: नूप स्वरूप रंग प्योर आपके भूपा
1: अंडा के रस तजगिनी धुल खान व और चदिनी
0: कौन सी हो संगर कहता
1: सागरी शिष्ट दिखाए चंब जुगा स्वरूप से अंब
0: मेरी तुम करो सिख बार सिख संगर
1: दूजते पाता सकल लेस करो रंगाता
0: सुनने परे दिन के दुस्तुक तुम्हारे
1: उन पर परे ते हारे दिन के तुम संकट सुमतारे
0: बाद दिया है ताकि काल निगनी आए है
1: रक्षा होए ता है सब काला दुशरिष तरे तत्काला
0: कृपा दर्शन जाए न रो ताके ताद निंगवार हो
1: वेदी से गर्मो सब होई दुशाए से सके न कोई
0: एक वाजन तुम्हें सुबारा काल फास्ते ताए वारा
1: जिन्हें नाम त्यार हो।

0: कौन स्क्रब गुलन सबरा
1: के मिक्स कल दे को हटा दो तो केन कोचे कता
0: जब दे दियाला पुरन ग्रगंद काला
1: मन वाचत बल पावे सोई दुमन से भी आपत को

0: दुख दर्द मो निकल न तिन नर के रहे ओ जोया की एक बार चौपाई को कहे
1: समस्त त्रस स्नी जद सस दीन की जय
0: पाद सुगी अष्टमी नवाराती सत्रव ग्रंथ सुधारा
1: पाएंगे जब ते में तब ते को अंतर नियो नियो
0: राम नहीं पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मानियो
1: सो वेर खे मेक न जानियो
0: श्री स्वान कृपा तुमने कर मैं न कहो।

0: सब विसारणा
1: अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सुवारणा
0: स्वामी
1: सुखी मनु विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले
0: साचे साहेबा क्या नाही करते रे
1: करता तेरे सब कुछ है जिसे सो पावे
0: तेरी नाम मन वसावे
1: नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द नेरे
0: सच्चे साहेब क्या नाही करते रे
1: साचा नाम मेरा यादारो
0: साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया
1: कर सां सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पूजाइया
0: सदा कुर्बान कीता गुरु विठो जिसी ए बड़ियाई है
1: कहे नानक सुनो संतो सबत रोपे यारो साचा नाम मेरा यादारो
0: वाजे पंच सबत घर सभागे सबद वाजे कला जित कर धारे
1: पंच टूट वास कीते काल कंटक मारिया
0: करम पाया तू जिन कहूं से नाम हर कह लागे
1: कहे नानक तै सुखो आदित कर अनद वाजे
0: साची लिवे बिंदे निमाणी दे निमाणी लिवे बाजो क्या करे बेचारिया
1: तुरवा समृद कोए नाही कृपा कर बनवारिया
0: सबद लाख सवारिया
1: कहे नानक लिवे बाजो क्या करे बेचारिया
0: आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जाने
1: जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया
0: कट्टे ज्ञान अंजन
1: सारे अंदरो जिनका मोह टूटा तिनका सब सच्चे सवारिया
0: कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जाने
1: बाबा जिसु दे सोई जन पावे
0: पावे त सो जन दे जिसु दे जिसु होर करे क्या वाहेगुरु
2: एक पारण बोल
0: सो जन जिसु दे
1: भावे ता सो जन दे जिसनु होर क्या करे विचारिया एक परम पुल है फिरैदे दिसक नाम लाग सवारिया कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे करे कहानी कत केरी कित द्वारे पाइया हुकम मनियो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी
0: कहानी
1: ए मन चंचला चित राई किने ना पाया
0: किने तू सुन मन मेरिया
1: ए माया मोणी जिने परम भुलाया
0: तिने कीती जिन ठगोली पाईया
1: कुर्बान कीता जिसे बिटो जिमो मीठा लाया
0: चंचल चतराई किने न पाया
1: ए मन प्यारिया तू सदा सत संभाले ए कुटुंब तुझे देखदा चला है नाही तेरे नाले
3: साथ ते चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई है
1: ऐसा कम मूले न की जज दंत पछोताई है
3: सतगुरु का उपदेश सुन दो तेरे नाले
1: कहे नानक मन प्यारे तू सदा

0: पाया।
1: कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया।
0: सुर नर मुंजन अमृत खोजे सो अमृत गुरते पाया।
1: पाया अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन बसाया।
0: जी जन सब तो दुपाए वेग प्रसन्न आया।
1: लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु पला पाया।
0: कहे नानक जिसनु आप तुठा ते अमृत गुरते पाया।
1: भक्ता की चाल निराली चाला निराली भक्ता केरी बिखम मार्ग चलना।
0: लभ लोभ अहंकार तृष्णा बहुत नाही बोलना।
1: धन्य तिकी वालो निकी एत मार्ग
0: गुरु प्रसाद जी ने आप तजया हर

तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हम बारिक तुमरे तारे जिहिवा एक कवन गुण कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी

कोट पराद हमारे खंडह अनेक विधि समझावह। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावह। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले।

गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु

वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु।

0: वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु
1: वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु
0: वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु व

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

0: गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु
1: वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु
0: वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह, गुरु वाह,

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

और सहज चली जाइए गुरमुख प्यारिओ। जदों श्वास अंदर नूं जावे तां वाहे, जदों श्वास गगन नूं आवे तां गुरु की आवाज़ नूं महसूस करिए। रसना नूं बोलण तों बंद कर दिए जी।

माघ मजन संग साधुआ धूरी कर इशनान हर का नाम ध्याय सुन। फिर की होएगा? महाराज कहते सबना नू कर दान, जन्म करम मल उतरे मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोहिए बिनसै लोभ सुवान। जिन्हां पंजां दा ज्ञान सानू गुरमुख जन दे रहे ने, जदों आपां इस तरीके नाल अभ्यास करांगे तां इन्हां पंजां तों साडा खेड़ा छुटना शुरू हो जाएगा। सो आओ गुरमुख प्यारिओ, आपां जिन्ना समां साडे को बचिआ आपां फिर तों गुरमंत्र नाल जुड़िए जी। वाह